रहयम सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा केहा सो कर केहा

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे, तिस साहिब की टेक नानक मणे माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, प्रसादान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवां मत उची, मत पत दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु, अपने पह दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब, समूह गुरुधामां दे खुले दर्शन दीदार, सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो, निमाणियां दे मान, निताणियां दे ताम, नियोटियां दी ओट, ने आसरियां दे आसरा, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ, आप जी दे हजूर सो दर रह रह साहिब दे पाठ दी अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव आईयां संगतां दे दासरियां दे हिरदे ते वसाउणा, सब दियां दर हाजरियां तेरे फुल पे ढावां प्रवान करनियां, दरों करो नाम दाम चढ़दी कला दी दात बख्शनी, परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वादे करने, अरदास बेनती है संगतां वल्लों, गुप्त परिवार वल्लों, आप जी वल्लों दित्तियां दातां दा शुकराना करदियां सच्चे पातशाह जी अरदास बेनती करवाउंदे हन, कृपा करनी नाम बाणी दा प्रताप बख्शना सच्चे पातशाह, बाणी नाल जोड़ के रखना प्रति वेले दी संभाल बख्शनी, कारोबारां विच वाधे करने, गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां। अश्विंदर सिंह समूह परिवार वल्लों कार्यां दे विच सफलता सुख शांति वास्ते अरदास बेनती करवाउंदे हन, कृपा करनी सच्चे पातशाह जी हर प्रकार चढ़दी कला बख्शनी, गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां। आप जीआं दे बख्शियां खजानियां विचों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजिर है, करी पाक साल सोज पवित्रा हुण लाभ भोग हर राय, आप जी दा सीत प्रसाद जो छके नाम, वाहिगुरु वाहिगुरु जपे, श्री मुख वाग दी बख्श करो, सही प्यारे मेल जना मिले, आप जीआं दा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या भई अकाल के, सब सिखण को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की, जो प्रभ को मिल बोच है।

प्रेम दे चंदन दा अंतर रतन विचार और अपने अंदर कीमती विचार करने रतन कीमती होंगे है दाग जिन्हों हीरे जवाहरात आदि अज सब तो महंगे उही है दुनिया के उत्ते ते कहिंदे सब तो महंगी विचार कर दे अंदर सब तो महंगी विचार की है सब तो कीमती विचार की है सब तो कीमती विचार यही है कि सब नू प्रेम कर दे आखो सतनाम श्री वाहिगुरु कोई ऐसा नहीं अखां दे सामने आवे जिन्हों से नफरत करते हुए महाराज जी कहते हैं भी प्रेम का चंदन लाया सी शरीर ते सब नू प्रेम कर दे हुण माफ करना जेडे साडे लोग किसी नू कोई माड़ा मोटा साफ सुथरा होया देख के निंदिया कर लग पैंदे आ तुसी ए सिंगार करके देखिया कदे जिहड़ा महाराज जी ने किया लगा के दिखाओ प्रेम दा चंदन करके दिखाओ हर एक नू प्रेम पता चल जे एक घंटा नहीं कर सकदे लगातार किवें करोगे सब नू प्रेम सौखा आ कह के इत्थे मैं भी बोल के चल जा तुसी भी सुन के चल जाओ ते सौखा काम है भी प्रेम ही करना बहुत औखा काम

गुरु प्यारे साध संगत जी, आप जी ने शब्द श्रवण किया मन राम नामा बेदी ने भगत नामदेव जी का शब्द। उन्होंने उदाहरण दिखाई कि जिस तरह एक बच्चा आकाश के पतंग उड़ाता तो उसका जिहड़ा ध्यान है डोरी के इस तरह रहिंदा है बहुत पक्के तौर पर। आपस में अपने दोस्तों नाल गल्लां बातां भी करता पर पतंग वाल ध्यान उसका पक्का ही रहिंदा है। तो भगत नामदेव जी कहिंदे कि उस तरह जिहड़ा मेरा मन है वह वाहिगुरु के चरणों के नाल जुड़िया होया। मन राम नामा बेदीले जैसे कनिक कला चित मांडियो, जिस तरह एक सुनियार है जिहड़ा सोना बनाउंदा है तो बड़े ध्यान दे नाल बारीकी दे नाल काम करता है, उस तरह कहिंदे कि मेरा जिहड़ा मन है वह गुरु चरणों परमात्मा के चरणों के नाल जुड़िया होया है। अगे फिर उन्होंने उदाहरण दी कि कोई इस्त्री है जिहड़ी वो पानी भरन जाती है, जिस तरह पुराने जमाने के भरती सी खूह ते पानी लैन जांदियां सी बीबियां घड़े दे विच सिर ते गागरा रख के। उन्हां दा ध्यान आपस दे विच गल्लां भी करदियां ने पर ध्यान गागर दे विच है, गागर नूं बिना हाथ लाए अपने घर तक पहुँच जांदियां सिर ते रख के। इन्ना उन्हां दे विच बैलेंस है, भाव उस तरह कहिंदे मेरा मन है जिहड़ा परमात्मा दे चरणां दे नाल जुड़िया है। फिर कहिंदे कोई इंसान दूर गावां दा वग चराउंदा है, गां किते चर रही है उहदा बच्चा जिहड़ा बच्चा है वह किते चर रहा है, पर गां दा चित है जिहड़ा अपने बच्चे दे बच्चे दे विच है, उस तरह कहिंदे मेरा मन परमात्मा दे चरणां दे विच है। फिर कहिंदे भी एक इस्त्री है अपने घर का काम करती है, उन्हें अपने बच्चे नूं पंगूड़े दे विच पाया होया है, उहदा बच्चा पंगूड़े दे विच खेड रहा है पर वह आसे पासे अपने घर का सारा काम करती पर ध्यान उसका फिर भी बच्चे दे विच है। वह वार वार आके चैक भी करती है बच्चा रोंदा तो नहीं है, जां दुध पीना है उसने किस तरह। जिस तरह उस इस्त्री का ध्यान अपने बच्चे दे विच है, उस तरह कहिंदे मेरा जिहड़ा मन है वह प्रभु चरणां नाल जुड़िया होया। मन राम नामा बेदी, ये अगला शब्द है जिहड़ा ये भगत रविदास जी का है। उस ही भावना के नाल भगत रविदास जी परमात्मा नूं कह रहे कि तेरे ते मेरे दे विच कोई अंतर नहीं है, तू मैं ते मैं तू है, जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही मैं ना। जदों साढ़े अंदर होमें सी हंकार सी उदों परमात्मा नहीं सी, ते जदों हुण परमात्मा आ गया है उदों होमें नहीं है, अब तू ही मैं ना ही, मेरी मैं खत्म होगी तू मेरे हिरदे विच वस गई। इन्नी गूढ़ी सांझ है भगतां दी परमात्मा दे नाल ते उन्होंने ये कह दिता तेरे ते मेरे दे विच कोई अंतर नहीं है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक वाहिगुरु कनिक कटक जल तरंग जैसा। जिस तरह सोना है तो सोने का कड़ा दोनों सोने ने, सोने नू मेल्ट करके उसका कड़ा बना लो, शाप बना लो, मुंदरी बना लो, कुछ बना लो, चेन बना लो, उन्हें सोना ही रहना। इस तरह कहिंदे कनिक कटक जल तरंग जैसा, जिस तरह पानी ते पानी दी लहर है, पानी दी लहर थोड़ी जी उपर उछलेगी फिर पानी च मिल जाएगी, उस तरह कहिंदे परमात्मा तू मैं ते मैं तू हाँ। इतना प्यार है परमात्मा दे चरणां दे नाल भगतां दा। सुभाओ सारे इस पावन शब्द नाल जुड़िए। अगे बड़ी विवेकी दे नाल कहिंदे जे असी पाप ना करदे ते तेरा नाम पतित पावन कौन कहिंदा तैनू, जे असी जीव पापी ना हुंदे ते परमात्मा तेनू पतित पावन कौन कहिंदा। जो पै हमना पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। आओ समा तकरीबन हो गया है, सारे आओ आप रल के इस शब्द नाल जुड़िए। पहला शब्द आप जी ने श्रवण किया सी हर जन बोलत श्री राम नामा, फिर हर जन राम नाम गुण गावे, मन राम नामा बेदीले, ते अखीर दे विच फिर जदों ये सारा कुछ परमात्मा का कोई जन करता है, नाम सिमरता है, प्रभु नूं ध्यांदा है संगत विच मिल के, ते फिर उहदे दे विच ते परमात्मा दे विच कोई अंतर नहीं रह जाता। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। आओ सारे प्रेम नाल शब्द सुणीए।

सतगुराय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पामो, कल क्लेश तन माहे मिटामो,

अष्टपदी दस वसूले पाशे पावे एक बस्त कान विखोट गवावे एक बिना दे दस भी हरले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताको की जय साधर्म सकारा जाके मन लागा ब्रह्म मीठा सर्व सुखता हूँ मन मुठा जि जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंध शापनी दे राज खात पीत बरते अंत उलास अपनी अमान कश बहुर शाले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता भी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस तस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दया।

ब्रह्मज्ञान के दृष्टामृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी बंधन दे मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी के निर्मल जुगता, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्मज्ञानी सद जीव है नय मर्ता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जीगा दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी आराध का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब प्रहाथ।

भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक अपारस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पारत्र रूपना पेख नेत्र सादगी टहल संत संघेत करना सुने काहू की निंदा सबते जाने आप सुखो मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरा मन की वासना मन ते ठरा इंद्री जित पंच दोखते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णव सो जिस प्रसन्न मिशन की माया ते हुए भिन्न।

भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मंदे बिंसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मन खोवै तिस भगवती की मत ऊतम होवै भगवंत की टहल कराय नितनीत मंत्र अर पाए मिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक।

करगर बांधर अरतारे पास प्रेत मुगत पाथर को तार सर्वरोगा अवखत नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम काहू जुगत कितना पाइय धर्म नानक दिस मिलाय सिलिख्या तोर कर।

दुखन त्रिगत जोन करमाए, संतन गए दुखन तृष्णा में जलय, संत गए दुखन सब कोशलय, संत गए दुखन ते सब जाए, संत गए दुख नीच नीच आए, संत दुखी का धाम को राहे, नानक संत भावे ता ओए भी गत पाहे, संत

ताजम महल्यो मन मोर राम नाम हृदय मैं थोल लाद खेब संते संचाल प्रत्याग बिख्या जंजाल धन धन कह सब गोए मुकूजल हर दरगे सोए ए वा बार बिरला वा पारे नानक ताके सद बलहार चरण साधगे धोए तोये पियो अर्ब साधु अपना जियो साधगी धूर करो स्नान साधु पर जाइए कुरबान साध सेवा बटभागे पाइये सा।

संगना चाल तेरे तना तुम ख्याल बटाम मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर बनता इनते कह तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कह कमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पासारी जिंदी इत बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत

एक सिमर एक को मन आहे, एकस के गुण गाव अनंत, मंथन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर्ण रहो प्रभ्याप, अंग विस्तार एक ते पहे, एक अराध प्राशद गए मंत्र।

प्रभु केवल तनि तब बंद मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नर्ग स्वर्ग कहो कावन आवतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव शगत कह हो कित ठाए जब आपे आप अपनी जो तर तब गमन ने डर कमन कत डर आपन चलताप कर रहे हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कह विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कह हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस भूषद लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे

मुझे पसरे पासार संत प्रताप धोपा का अपे तने उनकी शोभा उन्हों बनी अपे कौत करे आनंद चो जापे रस भोग जोग जिस भावित सपन नाए लाभ है जिस भावित खेल खेला।

आहार अष्टपदी। आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जात पविता सुष्ट उपाय अपने भाणे लय समाए। तुम ते भिन्न नहीं किशोय अपन सू सब जगत परोहे। जागो प्रभ जी आप बुझाए सच नाम सोय जन पाए। सो समदर्शी तद का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता। जी जंतर सभता के हाथ दीन दयाल अनाथ गुनाथ। जिस राखे तुसको ना मारे सो मुआ। जिस मनो बिसारे तिस तज अब्र कां को जाए। सब सरेक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब अंदर बाहर जानू साध गुण निधान।

मत पूरी अमृत जागी दृष्ट दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जागे अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामे पुरख प्रधान जिस मन बसे।

स्वंतर स्वभार अनंत घटघट व्याप रहया भगवंत तरण माया आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण व्रतपाल बंधन पर्वत है पार ब्रह्म जैसिया क्या तैसा कर्म पौन बाणी वह संतर माहे चार गुण तह दसे समाहे

संजना के हृदय सब धर्म संजना सुने सुभजन सर्व्या भी राम संग रचन जिंजादा तिसकी ये रहत सत भजन साधु सब कहत जो जो है सोई सुख माने करन करावन हार पर बजाना है अंतर बसे बार भी उही नानक दर्शन देख सब ओही आप सत किया सब साते तिस प्रवते सगली उत्पात तिस भावता करे विस्तार तिस भावता एकंकार अनकला लखी न जाए जिस भावत लाए मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आ पिया बा भरपूर अंतर गज साहब जनाए नाथ जनाब बुझाए सरभूता अवतारा सर्वनयन अपेखण हारा

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सै भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवै जे सोची लख वार चुपै चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह

लई। मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोय। चंगा नाउर खाए कह जस कीरत जागले जे तिस नजर ना वही ता वात न पुछे के

मन जाने मन कोय मन्ने मार्ग ठाग न पाए मन्ने पास्यों परगट जाए मन्ने माग न चाले पंथ मन्ने धर्म सेती सन बंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय

निरंकार असंख नाम असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लेखन बोलन बान अखरा सिर संजोग बखान

एक बार जो तुद भावै साई परिकार तू सदा सलामत निंकार परियै हाथ पैर तन देह पानी धोते उतर सुखे मूद पलीती कपड़ होए दे साबुन लइयो धोए तो

ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण दे न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए

सुरा सदा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर। तिथे जोत महाबल सूर तिन मह राम रहया पर पूर।

समस्तस्तामं तेरा जोर चादरी छंद जलय है थल है पीत है पेह है प्रभु है अजू है देश है पेस है पजांग प्रयास छंद अगाधे बाधे नंदी स्वरूप है नम सर्माने समस्त दाने

रसावल शांत वह प्रसाद। नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे नंगं स्वरूपे भंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे

प्रसाद सवैये शराब के शुद्ध समूह सिदान के देख प्रियो कर योग जति के सूर सुरार्जन शुद्ध सुधाधक संत समूह।

चलेंगे। वीर पार बड़े मरियार विचार हिसार की धार पछैया तोर देश मिलिंद मुवासन मातिक जान के मार मिलैया गाड़े गढ़ान के तोल नहार सुबात नहीं चक चार लवैया सैब श्री सब को हिर नायक जाच कनेक सो एक दिवैया दानव देव फरेंद्र साचन भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाव तपेंगे पुन प्रतापन बार जय तुन पापन के बहु पहुंच खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे।

वाणी हे मन चंचल चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया इह माया मोहनी जिने इत भरम भुलाया।

और जित सेवे सुख पाई साहिब सदा संभालिए, जित गीता पाई है पड़ो सकाल बुरी क्यों कालिए, मंदा मूल की चई दे लमी नदर निहालिए, जो साहिब नाल हारी तिवे पासा ढालिए, किछ लाहे पर कालिए किछ लाहे पर कालिए।

साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जिन्ना दिसंदड़िया दुरमत भिंज मित्र साडे से हों टुडेंदी जाग सवाया

पते परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा शासन जीओ महाराज साहब जी की अपार बख्शिश वरत रही है। अमृत वेले दे दीवाना अंदर तुरकी बाणी दे जाप तुरकी बाणी दे कीर्तन उपरंत कथा का समा होया है। महाराज जी ने बड़ी कृपा की है अपनिया संगतां दे उत्ते। महाराज जी कहिंदे भाई जो कीर्तन है ना ये वाहिगुरु दे नाम दी वाहिगुरु दे अमृत दी मोहले तार वरखा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बरसातां दे दिनां च जदों बरसात पैंदी है जिहड़ी बरसात लगातार पैंदी रहे हटे ही ना कणियां ते कणियां चढ़ चढ़ के डिगण उहनूं मोहले तार वरखा कहिंदे आ।

पाक कर सरा सरयत लेख माव त्रिकत तर्क खोज टोला बहु मारपत मन मारो अबदाला मिलो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कतेब दिल माहे कुमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द सिदकले बद हो खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिस्त पीर लफज कुमाए अंदाजा हूर नूर मुस्क खदाया बंदगी अल्लाह है आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सो दै सोई हाजी सो मुल्ला मल ऊन नवारै सो दरवेस जे सिफत धरम सबे बख्त सबे कर बेला खालक याद दिल महमौला तस्वी याद करो दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरम

गई सभा मलेश की कर कूड़ा पैसा डांका बाजिए फतेह का निरंकार अवतार नाने गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गुरु अवतार जगमग ज्योत बराजी अब चल नगर मजार श्री सचखंड के दरबार सगल द्वार को शाड के गहो तुहारु द्वार बाहे गह की लाज गोबिंद दास तुहार सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बने आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड़ियाई किन्ने ताप नवारण हार दुख अंता सुहरा ताको बिघ्न को लागे जाकी प्रभु आगे अरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पन तेरा कीता जातो ना मैनु लोग कितो मैं निर्गुण यारे को गुण ना आपे तरस पियो तरस पिया मैं रहमत दो सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिले ताजी तन मन धीवे हरिया नानक नाम मिले तन मन धीवे हरिया तनासी महला पन एक ओंकार सतगुर प्रसाद घर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग घर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हर रंग जन को प्रभु अपने काता जो तू करे करावे स्वाम शाह मसलत परवान रहा पत परमेश्वर गतन रह धन गोपाल गुण साखी चरण सर नानक दास हर हर संती ये बिध जाती चरण सर नानक दास हर हर संती ये बिध जाती संती ये बिध जाती संती ये बिध जाती संती ये बिध जाती वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता हाँ मूर्ख तुम चित्र स्याने तू सर्व कला का ज्ञाता माँ दो हम ऐसे तू मैं माँ दो हम ऐसे तू मैं हम पापी तुम पाप खंड निको ठाकर देसा हम पापी तुम पाप खंड निको ठाकर देसा रहो तुम सब साजे साज नवाज यो पिंड दे प्राणा तुम सब साजे साज नवाज जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेहरबाना निर्गुण आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेहरबाना तुम करो भला हम भलो न जानो तुम सदा सदा दयाला तुम करो भला हम भलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख बधाते तुम राखो अपने बल तुम सुखदाई पुरख बधाते तुम राखो अपने बल तुम निदान अटल सुल्तान जीत जन सब जाचे तुम निदान अटल सुल्तान जीत जन सब जाचे को नानक हम हे हवाला रख संतन के पाछे को नानक हम हे हवाला रख संतन के पाछे चाचरी शन गोविंदे मकंदे उदारे अपार हरिया कारिया नाम में अकार गोविंदे मकंदे उदारे अपार हरिया कारिया नामे अकाम ढाडी दरपा मंगना दर कदे ना छोड़ ढाडी दरपा मंगना दर कदे ना छोड़ मनरता गोबिंद सिंह सच भोजन जोड़ प्रीत लगी हर नाम श्यों ए हस्ती घोड़े राज मिल खुशियां कणी जाय मुख न मोड़े ढाडी दरपा मंगना दर कदे ना छोड़ नानक मन तन चाओ नित प्रभु को लोड़ नानक मन तन चाओ इन नित प्रभु को लोड़ धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सर तू ही निरंकार तू सदा सलाम निरंकार तू ठाकुर उस भगवान नानक की प्रा बेनती अपनी भगती का धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सर तू ही निरंकार तू सदा सलाम निरंकार तू ठाकुर उस भगवान नानक की प्रा बेनती अपनी भगती का धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन धन धन बाबा नंद सिंह जी धन धन बाबा कोट कोट प्रणाम माफ तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धन्यवाद नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने श्रद्धा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
ਵਾਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ

गुर प्रतपाल नायक खसम हमारे निम्ख दिमख तुम ही प्रतपाल अम्बारक तुमरे तारे सजन सच्चा पातशाह सिरसा देसाहु जिस पास बैठे आंसू ही है।